0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: ना बिल्कुल जनाब।
1: तो भाई
0: दुश्मन हमेशा अपनों से पैदा होते हैं क्योंकि अपनों से ही अपनों की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती।
1: बिल्कुल दा खबर है सही दा
0: शर्तों पल दा खुशहाली नहीं शिकते कमतर खल की कतेशी।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: शुक्रिया आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
3: रेडियो अमन रेडियो अमन रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का एक नई दुनिया बनाने ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का जज्बा है आपको बाखबर रखने का जज्बा है आपको बाखबर रखने एक अज्म अपनों को पास लाने का बिछड़ों को फिर से मिलाने का एक जज्बा आपको खुश रखने का आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा खुश रहने का जज्बा आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात हमारे साथ रहिएगा

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटा ग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: ग्रानो रिदुन को द अमन रेडियो FM 88.4 बटा ग्राम दे दा वक्तासो जमुंगा इस्लामी नशरियात आ रही।

0: पर बल नंबर दे 0305-534-8441।
1: पेशावर टी दखवन मायार और द इतबार नुमदी उस पेशावर टी पावटग्राम तुरगढ़ शंगला अलई गुजबांडा टाकोट के पवड़ो और गटो जनरल स्टोर के आसानी से मिलावेगी। हम दगरेंगा पेशावर टी पहली जनरल स्टोर के हम दस्तयाब दे द पेशावर टी मैन डिस्ट्रीब्यूटर जवाद खान सरा तासो पदे नंबर राबिता कवलिशे व्हाट्सएप नंबर दे 0308-941-5893 मोबाइल नंबर दे 0321-592-1911 पेशावर टी पहर प्याले की खुन खुशबू और मायार।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क, मन राम।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: द बटग्राम खल्क दोपारा खुशखबरी जकचीप बटग्राम के बा द पेखबर डेर तजुर्बाकार लरुन के डॉक्टर डॉक्टर हजरत हुसैन से बाखल ओपीडी कवि दी ओपीडी बा द 21 तारीख नवाखला 30 तारीख पूरी कीगी। कचर तक तासुता द मेदे मसाइल एलर्जी सर दर्द मला दर्द कमजोरतिया पटो मसले शुगर ब्लड प्रेशर दमा और कुन्निसा बवासीर एंजाइटी टेंशन डिप्रेशन गुर्दे काने सरा सरा द जनानाओं और नारीनाओं पटी मसले यानोरो योश्मीर मसलों सरा मखयाई नोतासो न्यू जर्मन होम्योपैथिक मेडिकल क्लिनिक गट मोड।